0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे।
1: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र में हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। इसके लिए 21 मई को वोट डाले गए थे। निर्वाचन आयोग ने फालता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर 29 अप्रैल को हुआ मतदान रद्द कर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। मतदाताओं को डराने, धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट के बाद यह निर्णय लिया गया था। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास आज गोलीबारी हुई। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटना स्थल पर ही पासी के एक संदिग्ध को मार गिराया। इस दौरान एक नागरिक भी घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है और शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी। समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के भूमि मामलों से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय

फिल्म संसार के जानी मानी कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफ़ी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट।
2: कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।

0: अब सुन रहे थे चित्रलोक कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आज हमने राजेश रोशन और मजरूह सुल्तानपुरी की कहानी आपको सुनवाई।
1: आप सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम विविध भारती से। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: आज के फनकार।

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई, ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला।

1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार A.R. कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे K.L.

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरू सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरू के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया है।

0: जो न कह सका।
1: 24 मई सन 2000 को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत
1: लग जागने।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: আকাশবাণী মুর্শিদাবাদ অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে 102.2 MHz FM প্রচার তরঙ্গে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দুপুর 3টে থেকে দিল্লি কেন্দ্রের হিন্দি সংবাদ রিলে করে শোনানো হবে। 3:05 থেকে দিল্লি কেন্দ্রের ইংরেজি সংবাদ রিলে করে শোনানো হবে। 3:10 থেকে শুনবেন বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠান মুম্বাই কেন্দ্র থেকে রিলে করে শোনানো হবে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে কনকলতা। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
2: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
1: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।

होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में हो रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा शुल्क लिया गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। महिला वर्ग में अमेरिका की कोको गॉफ मौजूदा चैंपियन के रूप में हिस्सा ले रही हैं। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भामरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सिलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक बार मुस्कुरा दो इस फिल्म में आशा भोसले मुकेश की आवाजें आपने सुनी। एसएच बिहारी के बोलों को सुर में ढाला ओपी नैयर ने। इस गीत को सुनना चाहा दारागंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश से गंगाराम पांडे, तीर्थराज पांडे, दिलीप शर्मा, ध्रुवराज पांडे और इनके बहुत से साथी। इसी गीत को सुनना चाहा सिकंदर अली खान, बदुद्दीन शमसुद्दीन की बाड़ी के पास से, और ये पत्र आया बीकानेर राजस्थान से। एक और श्रोता ने इस गीत की फरमाइश की ज़िला अमरावती से, प्रवीण नगर से। ये हैं चंदू हातोले, सीमा हातोले, गंज ढुंडवारा उत्तर प्रदेश से, बीपी गौतम, सरिता, अनन्या, कुश, रिंकू टिंकू, रीना, ऐश्वर्या, श्रेय, आप सभी की फरमाइश थी।

खयाम की बनाई तर्ज पर इस गीत को गाया लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यश दास ने। त्रिशूल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। साहिर लुधियानवी का लिखा। रामलीला मैदान सचिंदी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मीनू त्रिपाठी और शिवांश अनूप सिंह और

अभिजीत सिंह की ये फरमाइश थी, हेतुराची से प्रवीण कुमार, और इसी गीत को सुनना चाहा गुराई बुरीवली वेस्ट मुंबई से अंशिका ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम मनचाहे गीत।

चोर मचाए शोर इस फिल्म का दो गाना था मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। गणेश कुमार की फरमाइश है ये पुणे से और भरत यादव काजल शर्मा विकास सक्सेना इनकी फरमाइश है बदायूं उत्तर प्रदेश से। और ये हमारे श्रोता हैं तहसील तिलहारा अकोले महाराष्ट्र से विनोद कुमार आड़िया, भारती पारस पायल, श्वेता और उर्वीबेन आड़िया।

ये गीत आप सुन रहे थे द ट्रेन फिल्म से, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी और इस गीत की फरमाइश की हंडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी और इसी गीत की फरमाइश की लीला बेन, स्मिता बेन, भारती, निधि, सेजल, मनाली ने। ये हमारे श्रोता थे तेलहारा महाराष्ट्र से। और अब आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाज़त संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। आज के प्रोग्राम में सुनिए उषा सक्सेना का लिखा नाटक चंदन वृक्ष।

0: गार्जियन क्या हाँ। कोई पिक्चर जाएगा और कोई शॉपिंग के लिए तरह तरह की ड्रेसेस और साज सज्जा देखने को मिलेगी। आया जी।
1: हाँ बिटिया,
0: हमारी चाय यही दे देंगे ना?
1: लाई चाय बिटिया।
0: चल बैठ सुनी।
2: हाँ। अरे यार, तुम्हारी बकबक से तो मेरा सिर दर्द करने लगता है।
0: तो ले चाय पी, एकदम गर्म है। अरे सुमी, जरा रेशमा का जूड़ा तो देख।
2: जूड़ा? अरे ये तो एकदम अजंता की मूर्तियों जैसा केश विन्यास है। कहाँ?
0: तूने शायद शैम्पू किया है। वाह, कितने खूबसूरत बाल हैं।
2: एकदम वर्षा की घनघोर घटाओं की तरह।
0: सुमन, सुमी वो देख, वो देख, सुमन देखो कहाँ। अरे कितनी अच्छी लग रही हैं।
3: सच में,
0: सफेद शरारा सूट और हवा में लहराती सफेद चुन्नी, क्या बात है।
2: अरे यार, ऐसे लग रहा है जैसे कोई हंसनी धीरे धीरे तैरती हुई चली जा रही है।
0: मैं तंग आ गई मैं तुम्हारी कविता से। न कोई थ्रिल है, न कोई एक्साइटमेंट
2: है। क्यों नहीं? अरे तुम तो हो थ्रिल एक्साइटमेंट का जीता जागता रूप। गोरी गोरी दुबली पतली एक प्यारी सी बालिका, जैसे
0: कटनार की गली, यही कहेगी ना। ले समोसा खा।
2: गरम गरम खिला रही हो।
0: हाँ तो फ्रेंड्स,
1: यस
0: मिस सुमी आपको अपनी एक नई कविता सुनाने जा रही है।
2: हाँ,

0: वेलकम प्रियंका।
1: ये कविता इन्होंने अपने प्रिय दोस्त चंदन के लिए लिखी है।
2: चंदन?
1: बस ये भी चंदन जैसी है। पर जरा सांप से बच कर है ना माय डियर फ्रेंड।
3: रीमा तू नहीं सुधरेगी।
1: तो सुनिए आप सब इनकी नई रचना। तो शुरू हो जाइए मिस सुमी।
3: अरे यार समोसा खाने दो।
1: कोई नखरा वखरा नहीं चलेगा। कम ऑन।
3: ओ रीमा अच्छा अच्छा तो सुन बस। खुशबू बिखेरता महकाता पवित्र करता नंदन, कितना प्यारा कितना सुंदर है ये वृक्ष चंदन। जी चाहता है इसे आंखों में आंज लूं, शब्दों में बांध लूं, मन में समेट लूं, कल्पना से संवार दूं, कर लूं वंदन हे वृक्ष चंदन।
1: लो मेरी तो गाड़ी आ गई भाई। मैं तो चली। चलेगी सुमी?
3: आज नहीं, भैया आते होंगे, उनका इंतजार करूंगी।
1: ओके बाय बाय फ्रेंड
2: बाय।

0: अरे नमस्ते भाई साहब।
1: अरे तू रीमा, लगता है संगत का असर आ गया है। हाय हेलो नहीं, नमस्ते। आज वो तुम्हारी कबूतरी नहीं आई?
0: कबूतरी? What do you mean? You mean सुमी? देखिए भाई साहब, आप मेरी दोस्त का अपमान कर रहे हैं। अरे थोड़ी भावुक है बस, बच्चों जैसी मासूम है, हंसती है तो सुरीले तार झंकृत होड़ते हैं, बोलती है तो जैसे कोयल कुहकुटती है, और चलती है तो
1: लगता है कोई हाथी झूम झूम कर चल रहा।
0: अच्छा भैया, फिर आपने उसकी बेइज्जती की?
1: अरे भाई गजगामनी कहा, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट।
0: अच्छा भाई, तो भाई आप उसकी इतनी बातें क्यों करते हैं? कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है?
1: चक्कर और उससे? अरे बाबा डर लगता है। आती है तो कहती है, डॉक्टर साहब एक नया गीत लिखा है सुनिए। क्या करूं तुम्हारी दोस्त है, झेलना पड़ता है उसे। लिखती है, कितना मोहक कितना सुंदर है इन फूलों का जीवन, हंसना खिलना और शर्माना, महकाना धरती का कड़कण।
0: अच्छा और क्या कहती है?
1: कहती है, खिलती कलियां झूमती लताएं, तपस्वी से चंदन वृक्ष, सब मुझे बहुत अपने लगते हैं, जिस दिन बाग में न जाऊं वे उदास हो जाते हैं।
0: और आप कहिए तो प्रपोज कर दूं?
1: नहीं रीमा, बहुत भोली है वो, अधखिली अनछुई ओस में नहाई पावन कली की तरह, जिसकी पलकों में न जाने कितने सपने हैं। मैं इंतजार करूंगा।
0: समझ गई भाई साहब, मौका देखकर मैं जरूर बात करूंगी। अभी तो वो भी मगन होगी अपने भैया के साथ।
2: स्वामी बिटिया जी, वो भैया जी आए हैं।
3: अरे भैया आप, घर में सब लोग ठीक तो हैं? और डैडी की तबीयत?
4: बहुत अच्छी है, घर में सब लोग अच्छी तरह से। वो तुझे मेरा तार नहीं मिला था क्या?
3: तार? वो तो नहीं मिला। खैर अब तो आप खुद ही आ गए हैं, बता दीजिए क्या लिखा था तार में।
4: यही कि रात की ट्रेन से हम लोगों का रिजर्वेशन है।
3: रिजर्वेशन?
4: हाँ, हमें आज ही बांदा जाना।
3: लेकिन क्यों, अभी तो मेरी छुट्टियों में एक महीना बाकी है और फिर मुझे परमिशन भी नहीं मिलेगी।
4: मैं तुम्हारी वार्डन से बात कर चुका हूँ, तुम जाकर अपनी पैकिंग कर लो, ठीक 8 बजे मैं टैक्सी लेकर आऊँगा।
3: लेकिन भैया अचानक ये सब क्या हो रहा है, मैं इतने दिन क्लासेस कैसे मिस करूंगी? साफ बताओ ना भैया क्या बात है।
4: तो सच कह दूं? तो सुन, पापा ने तेरे ब्याह की तारीख पक्की कर दी।
3: ब्याह?
4: इसी माह की 25 तारीख को तेरी शादी है, और इसीलिए मैं तुझे लेने आया।
3: ये तुम क्या कह रहे हो भैया? देखो भैया, मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता।
4: ये मजाक नहीं सुमी, सच है, घर में मेहमान भी आने शुरू हो गए।
3: वाह भैया, मुझसे पूछा भी नहीं और सब कुछ तय कर लिया।
4: देख सुमी परेशान मत हो, तू तो जानती है पापा रिटायर होने से पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेना चाहते हैं। अरे आखरी का रईस घराना है, लड़का मैकेनिकल इंजीनियर है, 2 बार बाहर भी हुआ है।
3: ओ भैया,
4: सब ठीक ही है। और देख, रही तुझसे पूछने की बात, तो अपने खानदान में ऐसी परंपरा नहीं है, बड़े बूढ़े जो भी ठीक समझते हैं वही करते हैं।
3: हाँ तभी तो आप भुगत रहे हैं, रईस घराने की लाडली बेटी से पापा ने आपका ब्याह कर दिया और आपकी जिंदगी।
4: सुमी बस प्लीज, दुख तिरक मत छेड़, सब अपना मुकद्दर है। पर तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उनके घर वालों से मिल चुका हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, और लड़के की बहन मंजू वो तो बहुत ही प्यारी। अच्छा सुन, मैं चलता हूँ, तू तैयार है ना?
3: सामान बांध लो, सब लाट साहब हैं, मुझसे बिना पूछे ही सब कुछ तय हो गया। कहते थे एमए कराएंगे और अब भी ये भी नहीं कर पाऊंगी। लड़का इंजीनियर है, अरे तो कोई और लड़की नहीं मिली, मेरा ही करियर खराब करना था। चल बेटा चढ़ जा सूली पर, एक खत तो लिख दूं रीमा को। प्यारी रीमा, तेरे चंदन वृक्ष को सर्प घेरने वाले हैं, मतलब मेरा ब्याह हो रहा है इसी 25 को, पहले से आ जाना नहीं तो जिंदगी भर नहीं बोलूंगी और नहीं ब्याह करूंगी। सुमी
2: विजया जी, चलिए भैया जी आ गए हैं।

0: अरे सुमी सुमी, देख तेरी बारात आ गई। ए सुमी, मैं भी तेरा दूल्हा देखा।
1: नहीं रीमा, मुझे छोड़कर मत जा।
0: क्यों?
1: मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
0: अरे घबराहट कैसा? सभी का ब्याह होता है। अरे शीशे में एक बार अपनी छवि तो देख ले, बिल्कुल अप्सरा लग रही है।
1: रीमा छोड़ मुझे। रीमा, शीशे में भी मुझे वही चंदन वृक्ष और उससे लिपटे हुए सांप दिखाई दे रहे हैं। मेरा क्या होगा रीमा?
0: सब बढ़िया होगा। अरे कुछ दिनों के लिए बस अपनी कविताएं भूल जा। अब तू एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रही है ना?
1: ठीक है।

0: मैं भी चलूं?
1: अरे बेटा इतनी जल्दी क्यों? शोमी के आने तक रुक जाती बेटी।
0: नहीं अंकल, रुक तो जरूर जाती, पर आज का रिजर्वेशन है और भैया स्टेशन आएंगे।
1: अच्छा बेटी ये बताओ
0: अंकल,
1: शोमी का दूल्हा तुम्हें कैसा लगा?
0: अंकल ये सब ब्याह से पहले पूछा जाता है, जो बिंद गया वही मोती। सुमी खुश रहे बस यही कामना है मेरी। अच्छा चलती हूँ, सुमी की यात्रा शुभ हो और वो अपनी एक नई जिंदगी में खो जाए।
1: हाँ।

0: भाभी घूंघट हटा दीजिए और पीछे टिक कर बैठिए। अरे अभी तो कई दिनों तक झुक कर बैठना होगा, है ना भैया? वैसे भाभी है बहुत खूबसूरत। भैया पापा की पसंद की दाद देनी पड़ेगी।
1: खूबसूरत है ये लड़की, वाह क्या कहना है, पारुल दीदी के पैरों की धूल भी नहीं है ये। इसे कह दो मंजू इसे आईएस बनना है, आईएस समझी?
0: जरूर बनेगी भैया, भला तुम्हारा कहना कौन टाल सकता है, है ना भाभी?
2: अरे सुनो सुनो नानी जी, मेरे अरे तार आप ताई आंटी दीजिए ना, जोड़ी की आंटी तार जोड़ी है।
0: आइए भाभी अब उधर बैठते हैं। आइए भैया
2: तुम भी चलो।
1: नहीं मैं आंगन में जा रहा हूँ, भाभी ताई जी और बुआ जी के पास।
3: मुबारक हो लल्ला जी।
4: अरे भैया दुल्हन है कि एकदम चांद का टुकड़ा,
2: किस्मत वाले हैं हमारे भी भैया।
0: अच्छी हो जी, चाय पी लीजिए भैया। आप लोग भी चाय पीजिए।
1: क्या कहा, मैं थक गया हूँ, इतनी जरूरी मीटिंग बुला रखी है मैंने, ऑफिस का सारा काम पड़ा है, ये कितनी सारी फाइलें निपटानी है और तुम कहती हो मैं थक गया हूँ। ये चाय ले जाओ और उस लड़की को पिला दो जो मेरे कमरे में बैठी है।
0: वो भाभी है भैया, अभी परसों ही तो तुम्हारे साथ उनका ब्याह हुआ है, हम लोग ही तो उन्हें विदा करा कर लाए हैं, कितनी प्यारी है भाभी।
1: भाभी अच्छा मजाक है, किसी को भी सजा कर बैठा दिया और वो तुम्हारी भाभी हो गई। ये भी भाभी है, ये भी भाभी है। कितनी सारी भाभियां हैं, चारों तरफ भाभी भाभी भाभी, वाह। लो लो चाय पियो, लो लो भाभी तुम भी पीनो, तुम भी पीनो, तुम भी पीनो।
4: अरे इसकी शादी क्यों कर दी गई है, हे भगवान, अब बहू का क्या होगा? डॉक्टर ने कहा था बुआरी के चांद सी बहू आते ही ग्रहण लग गया, हाय क्या होगा।
5: अरे बंधी भी ते पागल के साथ।
1: क्या कहा, अरे मैं पागल हूँ? तुम पागल हो, यही पागलों की बारात है, पागलों की। मैं पागल, मेरा मनुआ पागल, पागल मेरी प्रीत रे। अरे ये मुझे क्या पहना दिया, हार अंगूठी, ये लो ये लो ये लो, लूटो लूटो, पागल का ब्याह हुआ है, झूमो नाचो गाओ।
0: भैया भैया ये क्या कर रहे हो भैया? भाभी बुआ पकड़िए ने, मैं बाबूजी को बुलाती हूँ।
1: छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मुझे छोड़ दो छोड़ दो। देखो देखो मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो, तुम सब पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं
6: हूँ, क्या
1: मैं पागल नहीं।
0: बाबूजी बाबूजी बाबूजी बाबूजी,
6: क्या है मंजू बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो?
0: भैया को फिर दौरा पड़ा है बाबूजी, अनशन बोल रहे हैं।
6: क्या कह रही,
0: कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, चाची बुआ साबुनी पकड़े हुए हैं।
6: घबरा मत बेटी, मैं अभी गाड़ी निकलवाता हूँ, उसे डॉक्टर के यहाँ तुरंत ले जाना होगा। ऐसा कर तू जल्दी डॉक्टर वर्मा को फोन कर दे।
0: अच्छा
6: भाभी, राहुल विकी तुम लोग इसे लेकर पीछे बैठो, मंजू तुम बेटे बहू को संभालना।
0: अच्छा बाबूजी,
6: घबरा गई होगी, हम लोग इसे लेकर अस्पताल तुरंत जा रहे हैं।
0: ठीक है बाबूजी, भाभी ताई जी संभालिए भैया को। भाभी भाभी ये क्या आप रो रही हैं? भैया ठीक हो जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है भाभी, ये लीजिए पानी पी लीजिए।
4: नई जिंदगी की शुरुआत, वो भी इस ढंग से,
7: मंजू जी, क्या हो गया आपके भैया को? क्या इसकी वजह मैं हूं या फिर ऐसे दौरे इन्हें पहले भी पड़ चुके हैं? सच बताइएगा मंजू जी, आपको मेरी कसम।
0: सच ही बोलती हूँ भाभी, मेरे भैया जन्म से ऐसे नहीं हैं।
7: तो फिर?
0: बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, हर इम्तिहान में टॉप करते थे। इतनी छोटी उम्र में अच्छी नौकरी भी मिल गई, बाहर भी घूम आई हैं। लेकिन अचानक ही हमारे परिवार में एक ट्रेजेडी हो गई।
7: ट्रेजेडी?
0: हाँ भाभी, मेरे सबसे बड़े भैया का स्कूटर दुर्घटना में देहांत हो गया। भैया उन्हें बहुत प्यार करती थी और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। 10 दिनों तक ना सोए और ना ही किसी से बात की। उसके बाद ही पहला अटैक पड़ा, इलाज किया गया, ठीक हो गई, मेहनत की और नौकरी भी मिल गई।
7: वहाँ ठीक रहते हैं?
0: हाँ भाभी, ऑफिस में बड़ी तारीफ करते हैं लोग उनकी, काम भी बहुत करते हैं।
7: और डॉक्टर्स क्या कहते हैं?
0: उम्मीद दिलाते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वैसे ठीक रहते हैं, तभी तो उनका ब्याह किया गया है। भाभी आप क्यों चिंता करती हैं? अरे अचानक ही दौरा पड़ गया होगा, 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा अब आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ।
7: नहीं मंजू जी, अभी भूख नहीं।
0: तो लेट कर सोने की कोशिश कीजिए, मैं अभी आती हूँ। शायद बाबूजी आ गए हैं।
7: कितनी सुंदर जगह ब्याह किया है अपनी लाडली बेटी का। रईस खराना, शानदार हवेली, 4-5 गाड़ियां, ढेरों नौकर चाकर और एक प्यारा सा पागल पति। अरे डैडी, इससे अच्छा होता अगर आप मेरा गला घोट देती। जीते जी मुझे मारने की क्या जरूरत थी डैडी? रीमा, रीमा तो सच कहती थी, इस चंदन वृक्ष से संघर्षों के सर्प लिपट गए हैं। बड़ा डर लग रहा है मुझे।
0: भाभी सो गई मेरी भाभी, कैसा निश्चल भूला चेहरा है, कुछ घंटों में ही कुंभला गया है। किस सम्मोहन में बांध दिया है मुझे इस मासूम ने, मुझे ही कुछ करना होगा। लगता है बाबूजी आ गए हैं। भगवान, भैया ठीक हो गए हूँ। बाबूजी क्या हाल है भैया का?
1: क्या बताऊं बेटे, बहुत ही वायलेंट हो गया था।
0: हैं?
1: हाँ, अगर सावधानी ना बरती जाती तो शायद शायद वो नर्स का गला ही खोल देता।
0: बाबूजी?
1: हाँ, उसे इंजेक्शन देने जा रही थी और वो इंजेक्शन बड़ा ही कष्टदायक था बेटा। हे भगवान, ये किस पाप की सजा दे रहा है मुझे?
7: पाप क्या होगा बाबूजी?
1: क्या कह सकता हूँ मैं, फिलहाल तो इंजेक्शन देकर सुला दिया गया है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। राजेश बेटा।
8: जी बाबूजी।
1: कल सुबह सब जगह फोन करके डिनर कैंसिल करने की सूचना दे देना।
0: लेकिन बाबूजी, भाभी के मायके वाले ट्रेन से आ रहे हैं, चल ही दिए होंगे। बाबूजी, भैया की शादी करके आपने ठीक नहीं किया।
1: उस समय तो ठीक था बेटा, डॉक्टर की राय से ही तो सब कुछ हुआ था।
0: उन्होंने तो ये भी कहा था कि शादी से ठीक भी हो सकते हैं और बीमारी बढ़ भी सकती है, इसमें रिस्क है। हम सब ने आपसे मना भी किया था बाबूजी।
1: अरे बेटे की मोहब्बत को तुम लोग क्या समझोगे?
0: ठीक कह रहे हैं आप, उसके लिए एक क्या कई सुमी की जिंदगी दांव पर लगाई जा सकती है।
1: मंजू,
6: भंजू,
0: अगर आपकी बेटी के साथ भी यही होता तो?
6: चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चुप में आता है पढ़ देती है।
0: सच कह रही हूँ, इसलिए आप सहन नहीं कर सकती। कितनी मासूम लड़की है, उम्र में भी मुझसे छोटी। उसकी सिसकियां, उसका रोना, उसका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके लिए भी तो कुछ सोचिए बाबूजी।
6: अब तो बस एक ही उपाय है बेटी, शाम को उसके मायके वाले आ रहे हैं। सोचता हूँ उसे उनके साथ भेज दूंगा, शायद उसका वहां मन बहल जाए। जब रितेश ठीक हो जाएगा तो उसे बुलवा लूंगा।
0: ठीक है, मैं भाभी को मायके जाने के लिए राजी कर लूंगी। अब आप भी आराम कीजिए।
6: ठीक।
8: अरे आगे आप लोग, सुमी भी आई है। डिनर कैसा रहा? सुमी तू कुछ बोलती क्यों नहीं? रितेश कहाँ है?
9: मम्मी प्लीज, के सब बातें एक ही साथ पूछ लेंगे। सुमी बहुत थक गई है, उसे आराम करने दीजिए।
8: अरे क्या हुआ सुमी? अरे तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? देखो तो। हाँ, अरे तुझे तो बड़ा तेज बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। सुमी चल तू अंदर लेट जा बेटा। अरे जाना जल्दी से डॉक्टर को ले आ।
9: अरे हाँ बुलाता हूँ, आप उसके पास बैठिए।
8: सो जा बेटा। क्या हो गया मेरी सुनी बेटी?
9: आइए डॉक्टर साहब, देखिए कितनी तेज बुखार है।
8: हाँ देखिए डॉक्टर साहब, कितना तेज बुखार है।
10: इत्मीनान रखिए, इत्मीनान रखिए, मैं देख लेता हूँ। अरे भाई इसको तो बुखार है। ऐसा करता हूँ मैं इसे एक इंजेक्शन फिलहाल लगा देता हूँ, और ये दवाएं आप बाजार से मंगवा लीजिएगा, चार चार घंटे पर देते रहिएगा, सुबह तक बुखार उतर जाएगा।
8: ठीक है ठीक है,
10: और घबराने की कोई बात नहीं है।
8: ठीक है, जा बेटा दवाएं ले आ।
9: थैंक यू डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। सुमी सो गई है मम्मी, आप उस कमरे में चलिए, डैडी यहाँ बैठ जाएंगे। हाँ
8: ठीक है,
9: आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, आइए।
8: हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है?
9: मम्मी हमें धोखा दिया गया है।
8: धोखा? कैसा धोखा?
9: हाँ मम्मी धोखा, वो बात यह है कि रितेश को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। कई महीनों तक वो मेंटल हॉस्पिटल में भी रहा। वो तो कल शाम को ही फिर से उसे दौरा पड़ा, अब हॉस्पिटल में।
8: अच्छा,
9: उसके ड्राइवर ने हमें सब कुछ बता दिया मम्मी, नहीं तो हम तो धोखे में रहते।
8: नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब क्या होगा राकेश, मेरी मासूम बच्ची सोमी, ये क्या?
9: देखिए मम्मी, इस तरह घबराने से कुछ काम नहीं चलेगा। मैंने और डैडी ने तय कर लिया।
8: क्या?
9: सुमी अब वहां नहीं जाएगी। रितेश वायलेंट हो जाता है मामा, तो जान पर भी हमला करता है। अब हम सुमी को नहीं खोना चाहते। मम्मी एक बार सुमी ठीक हो जाए तो उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए भेज देंगे, रीमा उसकी केयर करेगी, और रही ससुराल वालों की बात तो उनसे हम निपट लेंगे।
8: अच्छा
9: अब ठीक है मामा, आप सुमी के पास जाइए।
8: ठीक है।
7: वर्ष बीत गए अपने आप से लड़ते हुए। वाह सुमी चौधरी वाह, बाहर मुखौटा पहन रखा है एक गंभीर प्राध्यापिका का, लेकिन अंदर अंदर छटपटाती है भोली भाली सुमी। क्या अपराध था मेरा, क्या अपराध था? भाग्य ने दुख भोगने के लिए मुझे ही क्यों चुना? अगर रीमा और डॉक्टर राजन न होते तो क्या होता मेरा, मैं तो टूट चुकी थी और मैंने मुझे बदले में क्या दिया, रीमा को दुख और डॉक्टर साहब को तड़प। आखिर वो क्यों तप रहे हैं एक टूटे हुए इंसान के लिए। मुझे हर वक्त समझाती रहती है, पर मैं क्या करूं। मैं
11: अंदर आ सकता हूं?
7: ओ, आप आइए बैठिए ना। रीमा का कोई खत आया? कैसी है वो? और जीजा जी और बच्चे तो ठीक है ना?
11: सब ठीक है, तुम कैसी हो सुमी?
7: अच्छी हूँ। सुना है आप बाहर जाने वाले हैं।
11: यहाँ रहकर भी क्या करूँगा सुमी? एक बात कहूँ सुमी, जिंदगी अनिच्छा से जी जाए तो बोझ बन जाती है, हर लम्हा बोझिल हो जाता है। अभी वक्त है सुमी, ये घेरा जो तुमने अपने चारों ओर बना रखा है उसे तोड़ दो सुमी, आज आखिरी बार कह रहा हूँ।
7: कैसे तोड़ दूँ? ये दुनिया, ये समाज मुझे जीने देगा?
11: समाज फिर वही समाज? क्या दिया है समाज ने तुम्हें? घुटन, तनाव और दुख, तिल तिल कर जलने के लिए छोड़ दिया है तुम्हें, और लोग भी जल रहे हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या? हार गए हैं हम भी, क्या मिलेगा शिलाओं से टकराने से? चलता हूं, गुड बाय सुमी।
7: राजन!
11: सुमी
7: रुक जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बहुत थक गई हूं।
11: सुमी,
7: और अब जीत हो।
11: ओ सुमी, मैं जीत गया, सुमी मैं जीत गया। शायद चंदन वृक्ष से सांप हट गए हैं
7: और बिखर गई है मादक गंध।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक चंदन वृक्ष। इसकी लेखिका थी उषा सक्सेना, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977 दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981 बसेरा।
2: जहां पे सवे

0: 1984 दुनिया
1: तू चांद नगर की शहजादी मैं जिस धरती का पंजा
0: 1985 जमाना
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए
0: क्या 1993

बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का पांचवा भाग। बीते चार हफ्तों में

0: कुछ दिन सेट होने के बाद कुछ रिश्तेदार बंबई आ गए थे ऑलरेडी, तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को फोन किया कि आपके लिए भी एक ट्रक खरीद लिया है, यहाँ कोलीवाड़ा में जहाँ हम थे
1: जी,
0: तो वहाँ पे ये मिलिट्री के क्वार्टर्स थे कुछ
1: साइन में,
0: साइन कोलीवाड़ा। तो हमारा जो कमरा था उसका नाम था T157
1: जी,
0: तो टी मतलब होता है टट्टी,
1: अरे
0: ओरिजिनल टट्टी थी वो,
1: ओ गॉड।
0: तो उसको लेवल करके सीमेंट करके घर बनाया गया, और कुलदीप जी शुरू से ही म्यूजिक के माहिर थे, गाते बहुत अच्छा थे, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रॉफी जीत के आ जाते थे। कोलीवाड़ा में भी कोई प्रोग्राम होता था, दिवाली आई, होली आई, कुछ आया, ये गाते थे और खूब रंग जमाते थे। मैं जब नाटक वाटक करने लग गया, छोटे छोटे रोल मिलने, तो मैं अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा करता था
1: जी
0: कि फलाना नाटक, किसी नाटक का नाम लिखता था, डायरेक्टेड बाय रमेश तलवार, म्यूजिक बाय कुलदीप सिंह, ऐसा लिखता था।
1: जब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है,
0: ना ना वो कुछ करते नहीं थे वो, लेकिन ब्लैक बोर्ड में लिखा होता था। उन्होंने भी कई बार नाम पढ़ा, और वो कहते हैं कि ऐसा था उनके दिल में, उनके दिल में ये आ गया कि यार ये मैं मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहता है। और इसी दौर में एक फिल्म की है, पता चला कि एक फिल्म बन रही है डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर, वो है उसका नाम है सौतेला, तो मुझे उसके रोल के लिए ले जाया गया। कुछ छोटा मोटा टेस्ट लिया और मैं सेलेक्ट हो गया, और मद्रास AVM में जो है उसकी शूटिंग थी।
2: एपिसोड 2 में रमेश तलवार ने ये दिलचस्प घटना बताई थी।
0: तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तफाक एक फिल्म बनेगी, 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त,
1: बिल्कुल।
0: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृष्ण साहब से, कि वहाँ चलते हैं, ये पिक्चर है, और मुझे असिस्टेंट रख लेंगे। 1 महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजरेगी आँख से, तो मैं काफ़ी आगे चलूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बीआर चोपड़ा सर ने कहा हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो। मनमोहन जी, यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई। उन्होंने कहा इसको असिस्टेंट रखो, यश अपनी पिक्चर है। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी 4 असिस्टेंट हैं, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बीआर चोपड़ा ने कहा 5वां असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में, देखेगा सब
1: जी।
0: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात। मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ,
1: Yes.
0: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म अच्छी फिल्म देखी हुई है 5 आने में। फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुरला पे जाके, कोलीवाड़ा से आकाश कुरला 1 आने का टिकट, वहाँ जाता 5 आने की पिक्चर, 1 आने का खाना और 1 आना वापस आना, ठन्नी में
1: काम बन जाता था,
0: काम बन जाता।
1: कौन कौन सी फिल्में देखी
0: सब होगी? कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो मैंने देखी है। बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में। अब था वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ पॉइंट पूछा गया, और मैंने कहा ये क्यों ना कर लें। तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा, करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई, अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जगह पे, यश चोपड़ा में नोट किया, उन्होंने प्ले भी देखा था शतरंज मोरे, यहाँ ये नोट कर लिया कि इसको जबरदस्ती 5 बार से रखकर कोने में बैठा हुआ। साहब आगे चले तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए। मैं गया मिलने,
1: जावेद साहब ने,
0: जावेद साहब और सलीम साहब दोनों बैठे थे। तो मैं गया, बोलने लगे भाई एक प्रोजेक्ट है, करेंगे आप? मैंने कहा जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगा। देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट है, आप सुन लीजिए
1: हाँ
0: फिर बोलिए, और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं। आपका दोस्त ऋषि कपूर इसमें होगा, मैं ऋषि कपूर के साथ उन दिनों बहुत फिल्में कर रहा था।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ऋषि कपूर इसमें होगा और साथ में होंगे राजेश खन्ना,
1: वो भी आपके दोस्त।
0: तो अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिम्पल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी
1: जी जी,
0: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में,
1: हाँ
0: तो पिक्चर को बिल्टअप मिलता है, ये उनके जहन में था, और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त थे। तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद और दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है खराब हो चुका था, खराब मतलब सीरियस हो गया था। ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल।

0: चिट्ठी।
1: मैंने कहा यार वही स्मगलिंग, वही पुलिस और सिपाही। और तो देखिए मुझे मेरे लायक नहीं है, कोई और करे तो बेटर है आपके लिए।
2: तीसरे एपिसोड में रमेश तलवार ने सुनाई थी ये घटना।
1: करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
3: बाप रे,
1: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में। और उनका बहुत ज़बरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में। और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था, साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
3: हाँ हाँ।
1: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
3: और सलमान खान ड्रॉप हो गए।
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
3: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
1: याद देखते हैं। नहीं करते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतना है, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी।
3: बिल्कुल, और थी भी वो
1: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
3: बड़ी स्टार कास्ट,
1: बड़ी स्टार कास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से।

0: रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत के चौथे एपिसोड में ये हिस्सा बड़ा ही दिलचस्प था।
1: तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है, उसने आइडिया सुनाया। उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था। तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ, लेकिन इसमें चेंजेस होंगे। नया न्यू कमर था राइटर,
0: जी जी जी,
1: उन्हीं का नाम है राइटर, है राइटर, स्टोरी राइटर उनका नाम ही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है। तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए। बोला बहुत अच्छा, अगर सागर सरदी कर लें। तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलिस्टेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
0: हाँ।
1: तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया।

0: चलिए अब सुनते हैं आगे की बातचीत, जिसमें हमने रमेश जी से रंगमंच की उनकी गतिविधियों के बारे में पूछा है।
1: अच्छा, अभी आखिर में कुछ ऐसे नाटकों की बातें करना चाहता हूँ जो आपने सेलिब्रिटीज के साथ किए हैं, जैसे शबाना आजमी के साथ नाटक किया है, जया भादुड़ी के साथ, जया बच्चन के साथ नाटक है, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ है, जीनत अमान के साथ है।
2: जी, सबसे पहले मैंने पूजा भट्ट के साथ किया नाटक,
1: खूब

0: खूबसूरत
1: खूबसूरत। पूजा भट्ट के साथ क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई प्ले कर रही है वो, और कोई और डायरेक्टर डर कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, कोई कर रहे थे। तो वो डायरेक्टर गुरु टाइप के थे, तो उन्होंने डांटा वांटा ये किया, तो ये कुछ आपस में अनबन हो गई उनकी। तो मेरे ख्याल में बोनी कपूर ने कहा रमेश से कहो पूछ लो, तो मेरे पास कोई आया जो भी ऐसा है करोगे, बाहर अमेरिका में टूर है ऐसा। तो मैंने कहा कौन सा प्ले है, उन्होंने प्ले बताया, प्ले स्क्रिप्ट बताई, और मैंने वो सुनी और मुझे लगा कि प्ले बहुत अच्छा है, अच्छा है प्ले था, बहुत अच्छा था। और उसमें कोई और आर्टिस्ट कर रहा था रोल पहले, जो मुझे लगा मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, पूजा भट्ट के संग बाप का रोल कोई और कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस एक्टर का।
0: जी जी।
1: मैंने कहा ये जो इधर टेंट्रम दिखा रहे हैं हमको, जो कुछ बातें वो करते थे ऐसी, ये नहीं हो रही होगा, ये नहीं होगा, मैंने नाटक में नहीं होता।
0: जी जी जी।
1: मैं आपके सिनेमा में बात सुन सकता हूँ।
0: जी।
1: नाटक में अमेरिका में बैठे तो मैं क्या करूँगा। तो वो मैंने कहा भरत कपूर को ले लेते, मेरे नाटकों में सब में काम करता है वो, और तुम्हारा फादर बिल्कुल लगेगा और मेरे कंट्रोल में। तो उस आर्टिस्ट को मैंने कह दिया भाई तुम्हारे ऐसी प्रॉब्लम है, शूटिंग डेट्स होती हैं, फलां होता है, ये होता है, वो होता है, नाटक में ऐसा नहीं होता, तो तुम अगर ना करना चाहो तो। उन्होंने कहा हाँ मैं नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम जितना है मैं वही दूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। वो तो भरत कपूर को मैंने सुनाया सब्जेक्ट, उसने कहा मैं कर लेता हूँ। फिर पूजा भट्ट के साथ हम वहाँ गए, वहाँ उसके 5-6 शो हुए अमेरिका में, यहाँ आके 4-5, फिर 5-6 शो यहाँ पे किए, मतलब मेरे ख्याल में मुश्किल से 10-12 शो किए थे हमने उसके।

0: शबन आजमी वाला प्ले
1: नहीं, इसके बाद हमने पहले ये, इनके बाद जिया जी के पास गए हम।
0: जी जी,
1: मेरे पास मेरा दोस्त संजय गोराडिया आया।
0: जी,
1: संजय गोराडिया गुजराती का बहुत फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर है और एक्टर भी है, और वो मेरे साथ शुरू में मेरी फिल्मों में प्रोडक्शन भी करता रहा। सागर साहब के साथ बाजार में प्रोडक्शन असिस्टेंट था सागर साहब का, और फिर वो मैंने एक बनाई थी NFDC के लिए पिक्चर तेरा नाम मेरा नाम, न्यू कॉमर्स को लेके, उसमें भी प्रोडक्शन कर रहा था और एक आध रोल भी किया था। तो आया, उसने कहा मैं तुम जैसे पूजा भट्ट के साथ प्ले करके आए हो वैसा अगर मेरे लिए प्ले करो तो मुझे अमेरिका का टूर मिल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कौन सा प्ले करना चाहते हो? उसने प्ले का नाम बताया, ये वाला, ये स्क्रिप्ट। मैंने कहा ये स्क्रिप्ट किसको सूट करती है, किसको करती है? जिया जी को करती है। और कौन है
0: जी
1: जो इसमें ठीक रहेगा? पहले जिया जी के पास पूछते हैं, अगर वो करने के लिए हाँ कर दें। और जिया जी के साथ मैं सीरियल कर चुका था उन दिनों, उनकी कंपनी का ABCL के लिए मैंने आरजू एक सीरियल किया था, 50 एपिसोड किए थे उसके। तो बड़े अच्छा रिलेशनशिप थी, बहुत इज्जत करती थी, मैं भी बहुत इज्जत उनकी करता था। मैंने उनको बताया कि ऐसा मैं कर रहे, अगर आप फ्री हैं और आप करना चाहती हैं अमित जी से भी बात कर लीजिए, महीने का टूर होगा कहीं अमेरिका का अलग अलग सिटीज में। बोले सब्जेक्ट सुनाओ, मैंने सब्जेक्ट सुना, सब्जेक्ट उनको बहुत पसंद आ गया और उन्होंने मुझसे कहा ऑलमोस्ट हाँ है, फिर भी मैं एक बार अमित जी से बात कर। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि हम रिहर्सल कितने दिन करेंगे। मैंने कहा ऐसे 6 हफ्ते होती है या 45 दिन होती है। बोले उसके बाद आप मेरी फैमिली को दिखाएंगे अपने, ओपिनियन लीजिए आप। मैंने कहा बिल्कुल, अमित जी को बुलाऊंगा, बच्चों को भी बुलाऊंगा, सब जो भी देखना चाहें और भी ऑडियंस में जिसको आप बुलाना चाहती हैं, मैं भी अपने लोगों को भी बुलाऊंगा, हम देख लेंगे। कमिट करने से पहले मैंने कहा डेटे कमिट नहीं हो तब तक मैं बेचूंगा नहीं, फिर वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा डेटों का, टूर का। बोले ठीक है। रेसलिंग हुई, हमने शो रखा भाईदास में, प्राइवेट शो जिसमें अमित जी भी आए और भी बच्चे भी आए, सब सब ने, हमारे भी दोस्त फैमिलीज आई, सब ने देखा, लोगों को प्ले बहुत पसंद आया। जब प्ले होने लगा था तो मेरे ख्याल में था कि इनके सामने हस्बैंड जो है अनुपम खेर टाइप का कोई आदमी हो, या अनुपम हो या कोई और इस तरह का आदमी होना चाहिए। उन्होंने कहा रमेश जी आप ही करिए।
0: अरे वाह।
1: उन्होंने मुझे थिएटर करते हुए देखा होता, मेरे प्लेस देखे हुए जब दिन में मैं एक्टर था। मुझे आप ही करिए, कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ा सा वो झटका लगा कि जिया जी के सामने मैं नहीं करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे आप, करिए आपने जैसा सुनाया ना वैसा ही करिए। तो जब पढ़ा था मैंने उनके सामने प्ले, तो मेरे रिहर्सलें करनी शुरू हो गया और फिर हमने अमेरिका टूर किया और बहुत अच्छा हुआ। और इधर जो ट्रायल हुआ उसमें भी लोगों ने मुझे अप्रूव किया।
0: वाह वाह वाह।
1: उन्होंने कहा रोल मेन जिया जी का, लेकिन आपका रोल भी बहुत अच्छा है, आप एकदम रिलीफ है प्ले में, आप जब जब आप आते हैं आपके एंट्री का इंतज़ार होता है, क्योंकि वो जजी थ्रू आउट प्ले में है और मेरा कभी कभी बीच में आता था मैं 3-4, तो सब ने अप्रिशिएट किया और मैंने वो रोल कर डाला।

और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब हुआ, अब जिया जी को भी पसंद आ गया थिएटर करना, वो प्ले सुपर डुपर हिट हुआ और इन लोगों को फीस जो उन्होंने मांगी वो मिली थी। उसके बाद दूसरा प्ले आया, वो मैंने इनको डॉक्टर मुक्ता प्ले सुनाया, उसमें भी वो मेन रोल था लेकिन सीरियस प्ले था। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप ये रोल करिए जो हस्बैंड का रोल है। अगेन मेरा रोल बीच में ही है लेकिन लाफ्टर लाफ्टर आते हैं मेरे आने पर, ऑल्दो मैं कॉमेडियन नहीं हूँ लेकिन वो रोल ऐसा होता है कि मुझे लाफ्टर तो मिलते हैं। वो रोल भी, वो प्ले, फिर हम दोनों प्ले साथ लेके फिर अमेरिका टूर पे गए। अमेरिका से फिर गल्फ कंट्रीज भी गए, पहले लंदन गए, लंदन से गल्फ कंट्रीज भी गए। इस तरह हमारा 40 दिन का टूर हुआ, बहुत अच्छा रहा और सबको फीस अच्छी मिली। क्योंकि बाहर प्ले में आपको मुँह का दाम, जब आप स्टार प्ले करते हैं तो जो प्राइस स्टार बोलेगा उस हिसाब से पैसे मिल जाते, फिर डायरेक्टर को भी उस तरह मिल जाते हैं। इस तरह से हमको, जब ये प्ले चल रहे थे तो एक दिन शत्रु जी से मुलाकात हुई, तो उन दिनों कुछ दिल्ली जाते थे और ये सब, तो उन्होंने कहा यार मैंने तेरा प्ले देखा बहुत अच्छा था। मैंने कहा आप करेंगे प्ले? नहीं करूँगा, जरूर करूँगा। कब करना चाहोगे? कौन सी है स्क्रिप्ट? सुनाओ। और उनको स्क्रिप्ट सुनाई और वो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड प्ले था जो उन्होंने सुना, और वो प्ले अच्छा है, आज तक चल रहा है वो भी। और उसमें राकेश बेदी और ये और लड़की एक है और संजय गोरडिया एज प्रोड्यूसर, वो एंट्री भी मारता है कुछ शुरू में। तो चार ही कैरेक्टर है, मैं उसमें रोल नहीं करता हूँ। वो प्ले भी हिट हुआ, आज तक चल रहा है। उसके बाद जीनत जी किसी शो पे आई थी, अमित जी के ना इनके शत्रु जी के, उन्होंने दो तीन बार अटेंड किया था प्ले। उन्होंने कहा आपका मेरे लिए स्क्रिप्ट है? मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा वो देखिए बात यह है कि संजय गोरडिया से आप कमर्शियल बातें कर लीजिए, मैं आपको स्क्रिप्ट बाद में सुनाऊंगा। क्योंकि होता है ना कि बात कर लें फिर स्क्रिप्ट भी आप तक पहुंच गई, फिर उसके बाद मैं किसी और को सुनाऊंगा, आपको लगेगा आपका सब्जेक्ट किसी और को सुना दिया। उन्होंने कहा हाँ मैं कर लेती हूँ। उन्होंने बात जो भी बिटवीन प्रोड्यूसर और हो गया, उन्होंने हाँ कर दी। अब जब आया तो उन्होंने कहा आप रोल करेंगे, मैंने जया जी के साथ आपको रोल करते दोनों प्लेस में देखा है। मैंने कहा जी वहाँ जया जी की हाइट कम है, आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है। बोले आप 6 इंच के जूते पहन लो। वो मैंने वैसे जूते बनाए, उनके ऑपोजिट रोल किया, वो हो गया। इतने में एक प्ले था शीशों का मसीहा, फैज़ अहमद फैज़ की पोइट्री के ऊपर उनकी कहानी, लाइफ कहानी थी, तो उसको जोड़ा हुआ था और वो हमने प्ले खेला। शबाना जी ने हाँ कर दिया। मैंने पूछा जावेद साहब करेंगे? बोले तुम पूछो भाई, मैं नहीं बोलूँगी। मैंने उनको सुनाया, उन्होंने कहा हाँ मैं करूँगा, पढ़ना है खाली ना, याद तो नहीं करने डाले, मैं पढ़ूँगा और पोएट लगूँगा मैं। तो उन्होंने भी ओके कर दिया। तो वो लेके हमने 5-6 शो इधर ही किए, लेकिन जो फिर वो उनके राइटर थे उस प्ले के, वो चाहते थे कि वो रोल करें खुद। तो मैंने कहा भाई अब ये तो प्ले चल गया है, अब तो वो करते हैं, मैं उनको थोड़ा बोलूँगा तो आप छोड़ दीजिए प्ले। शबाना जी को ये थोड़ा करूँगा कि अब आपके साथ ये करेंगे। तो उनका फिर मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दे सकता, समथिंग राइटर ने। ठीक है, शौकत भाभी ने अपनी आप बीती लिखी, तो टाटा एक्सपेरिमेंटल थिएटर में उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा उसका स्टेज पे, पढ़ा तालियां बज रही हैं, ये और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप वो किताब पढ़िएगा। तो जैसे ही खत्म हुआ चैप्टर, मैंने कहा शबाना इस पे हम प्ले करेंगे, क्या बात करते हो? मैंने कहा आप उसमें रोल करेंगे यही वाला जो शौकत भाभी ने किया है, और अगर जावेद साहब करना चाहे कैफी साहब का रोल तो जावेद साहब को दे दे, आप दोनों का पेयर भी हो जाएगा सेम, आप लोगों ने दोनों साथ में किया हुआ है, तो कैसे तुमको लगता है कि ये सब्जेक्ट हो जाएगा, अच्छा बनेगा? मैंने कहा उसमें बीज सारे हैं, मैंने आपका तुम्हारी अमृता भी देखा है, उसमें भी आप बैठ के दोनों पढ़ते थे फारूक और आप, शीशों का मसीहा भी किया है हमने और ये भी है, बहुत अच्छा बनेगा। तो फिर एक काम करिए, जावेद साहब से कहिए लिखें। मैंने कहा जावेद साहब को आप कहिए। बोले मैं नहीं कहूँगी, मुझसे ना करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी? आप अपने ढंग से, आपने काम किया हुआ है ना उनके साथ, तो आप उनके उनकी स्क्रिप्टों फिल्में बना चुके हो, कहिए। तो फिर मैंने जावेद साहब से कहा कि आप ये स्क्रिप्ट लिखिए। तो जावेद साहब ने स्क्रिप्ट लिखी और रोल किया।
और प्ले तब से लेकर आज तक चलता है। अभी जावेद साहब ने खुद बिजी हो गए तो उन्होंने कहा रमेश जी अभी आप ना मुझे रोल के लिए मत बोलिए, क्या होता है मुझे आप लोगों के साथ डेटें मैच करनी पड़ती हैं शवाना की और वो, तो आप किसी और को, तो आप कंवलजीत सिंह करते हैं रोल, वो सेम रोल, और अभी हम टूर करते रहते हैं, अभी भी ऑफर आई हुई है, जाएंगे बाहर।

0: स्वामी जी, बहुत बरस तक फिल्में डायरेक्शन किया आपने, टेलीविजन पर काम किया, और उसके बाद फिर एक बहुत लंबा अरसा है जहां आप वापस थिएटर की तरफ लौट आए, और मैं आपके प्लेस देखता रहा हूं। आप थिएटर को जीते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वो एक जुनून है आपका। अपने सबसे लंबे समय से चले आ रहे प्लेस और इन दिनों जो कुछ नाटक आप कर रहे हैं उनके बारे में बताइए।
1: देखिए साहब, पहली बात तो यह है कि मैंने फिल्में करना बंद नहीं किया। मैंने लास्ट फिल्म बनाई है शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए, जिसमें रेखा जी और शत्रुघ्न सिन्हा हैं, उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उनकी मिसेज और एक उनकी पार्टनर है कोई, दोनों ने मिल के, और फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है। अब वो कैसे रिलीज करेंगे वो अब देखते हैं, OTT पे करते हैं या क्या करना चाहते हैं। और उनके साथ नाटक भी मेरा चल रहा है, उसके भी शोज करते रहते हैं। तो इप्टा में जो नाटक मेरे हैं जो बहुत देर से चल रहे हैं, एक तो शतरंज के मोहरे
0: सबसे पुराना है।
1: मतलब ये था कि मैं जब पहली बार शतरंज के मोहरे करने लगा था, उसमें मैं बच्चा था और चेहरे से लगता था कि 14-15 साल का है, और मुझे लव सीन करना होता था। 20 साल का रोल है श्याम का, उसमें कैरेक्टर का नाम श्याम है, तो मैं मुंह चुगाता था रोल करने के लिए कि मैं बड़ा लगूं, और मेरे सामने जो एक्ट्रेस होती थी वो अपना सुलवार या हिंदी में या कहीं और दूसरी जगह कोई नॉन एक्ट्रेस ऐसा रोल करती थी, तो मैं बड़ा लगना चाहिए। और उस वक्त जब मैंने पंजाबी में पहले प्ले किया, उस वक्त मनमोहन कृष्ण जी एक मेन काका जी का बुजुर्ग का रोल कर रहे थे, चाचा का, और हंगल साहब करते थे रोल आचार्य का उसमें, और मैं शाम जो लड़का है उसका करता था, और बाकी रात में नितिन सेठी उस वक्त के हीरो थे, वो करते थे डॉक्टर सतीश का रोल, अचला सचदेव उनकी मतलब मेरी बड़ी बहन का रोल करती थी। ये यहाँ से शुरू किया था। अब जो साहब मैंने वो प्ले का हमको शो मिल गया हैदराबाद में, ऐसा हुआ कि एक प्ले कर रहे थे आदर का ख्वाब, जिसमें बलराज सहनी साहब थे और गीता सिद्धार्थ, तो पिगमिलियन पे था प्ले। तो उन्होंने कहा हमको दो प्ले चाहिए, तो हमारे पास दूसरा प्ले कुछ था नहीं, तो हमने कहा ये जो पंजाबी में प्ले किया है इसको सब हिंदी में बोलना शुरू करो, तो देखते हैं कि कितना तक क्या चाहिए। वो बोलने लगे, सब लोग हिंदी में सेम लाइन है, पंजाबी और हिंदी नज़दीक नज़दीक की हैं, सिंपल वैसे ही वर्ड रखे, क्लिश हिंदी नहीं होगी, सिंपल हिंदी होगी, वो बन गया। जब एंड तक पहुंच गए फिर मैंने उसको फाइनल थोड़ा सा छोटा मोटा जो करेक्शन करनी थी कर ली, वो करके हम लोग जाके हैदराबाद में हमने शो खेला, और तब से लेकर अब आज तक ये नाटक हिंदी में चल रहा है। अब मैं वो रोल मेरे मैंने बंद किया तो रमन कुमार करता था वो रोल, मैं कोई और रोल करने लग गया, रमन कुमार के बाद राकेश बेदी वो रोल करने लग गया, फिर राकेश बेदी बड़ा हो गया, वो 20 साल का नहीं लगता, बड़ा लगने लग गया, तो अब कोई और बच्चा नया लड़का करता है, और मैं अब वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता हूँ कभी कभी, और मैं जब राकेश बेदी अवेलेबल होता है तो वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता है, अगर वो नहीं अवेलेबल तो मैं करता हूँ।
0: वाह वाह,
1: तो वो प्ले आज तक चलता आ रहा है। दूसरा प्ले जो मैंने आपको पहले कहा कि ये प्ले जो आखिरी क्षमा जो कैफी साहब का लिखा हुआ है, और जिसमें बलराज सहनी काम करते रहे, उसके बाद उस गालिब का रोल भरत कपूर करते रहे, अभी वो कमलजीत भरत कपूर का रोल करते हैं गालिब का रोल, और अभी हमने 56 साल की ट्रॉफियां बांटी हैं उसकी।
0: जी जी जी, काबुली वाला भी चल रहा है।
1: काबुली वाला अलग है, काबुली वाला का ऐसा था कि यही जब मैं शबाना के संग प्ले कर रहा था तो रिंकी भट्टाचार्य जी बिमलराज की बेटी वो आई परीक्षित थाने के संग आई थी, उन्होंने कहा कि रमेश तुम काबली वाला क्यों नहीं स्टेज पे खेलते। मैंने कहा काबली वाला एज इट इज तो नहीं खेला जा सकता, नाटक का वर्षन बनाना पड़ेगा, वो करके मैं फिल्म के ऊपर से ले लेता हूँ, आपके ओरिजिनल डायलॉग ओरिजिनल चीज़ें लेके एक स्क्रिप्ट बना के आपको सुना दूंगा। और परीक्षित थाने से कहा तुम रोल कर लो काबली वाला का, क्योंकि बलराज सहनी ने रोल किया था। उन्होंने नहीं यार, मैं अब हिम्मत नहीं है स्टेज पे काम करने की, वो टाइम अलग था, अब नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने आसिफ शेख से कहा कि भाई ये है, तो आसिफ शेख करता है वो रोल काबली वाला का, और वो नहीं होता तो विकास रावत कभी का बाहर कर,
0: मैंने देखा है क्यूट प्ले है वो।
1: हाँ, बहुत अच्छा है तो, लेकिन वो तो ओरिजिनल फिल्म से लिया हुआ है।

0: स्क्रिप्ट जो बनाई है फिल्म से लेके बनाई है और उसका हमने एक वर्सन स्टेज पे क्या हो सकता है उस तरह करके जमा लिया अपना और चलता है। लेकिन बहुत लंबा नहीं है, 40 मिनट का ही है प्ले। तो उसके साथ मैंने एक बार जाहिदा हिना करके एक पाकिस्तान की राइटर है, उन्होंने काबलीवाला लौट आया इन्हीं करेक्टर को लेके लिखा था और वो उन्होंने एक आर्टिकल सा लिखा, प्ले नहीं लिखा बता। तो मैं एज इट इज जब मेरा 40 मिनट का जिसको 2 घंटे पूरा चाहिए, तो मैंने तन्वी आदमी के संग सेकंड पोर्शन पढ़ने का रख लिया। अभी आपने देखा काबलीवाला जो एक्टरों के साथ अच्छे, ये सोलो पढ़ती है काबलीवाला लौट आया, तो जिसको 2 घंटे का होता है तो तन्वी आदमी करती थी। तन्वी आदमी अवेलेबल नहीं हुई तो राजेश्वरी सचदेव ने एक आध बात कर लिया, फिर लुबना सिद्दीकी ने एक आध बात कर लिया। पढ़ना है भाई, तुम रीडिंग एक दो बार मेरे साथ कर लो और स्टेज पे पढ़ो। वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है और ये उसके सारे बीज जो है काबलीवाला के लेके उन्होंने लिखा कि काबलीवाला जब उसकी बेटी पैदा, वो बच्ची जो बड़ी हो गई है, वो छोटी बच्ची बड़ी हो गया और वो डॉक्टर बन गई है और अफगानिस्तान में मरीज है आजकल और उनका इलाज करने वहाँ गई है। ऐसा लिखा, बहुत अच्छा लिखा हूँ। तो वो पोर्शन हमने काबलीवाला हमारा चलता रहता है।
1: रमेश जी, बहुत ही विस्तार से अब बातें हुई हैं और बहुत दिलचस्प कहानियां आपने सुनाई अपनी जिंदगी की, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए।
0: आपका शुक्रिया भाई, ये अंदर की सारी बातें आपने निकलवा दी मेरे, ये मैं खुद भूल चुका था, अभी कई बातें याद कर रहा हूँ, कुछ नाम याद नहीं आते हैं। अरे भाई उसका तो भी ये आपका ही वो था कि आपने आराम से सुना और इतनी देर तक सुना मुझे।
1: बहुत शुक्रिया सर।
0: शुक्रिया जनाब।

0: ये थी रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने पांचवां भाग सुना। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: तारा में आज
2: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उस आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: এই গানটি সঙ্গে সঙ্গে শেষ হল বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে লোকগীতি। আকাশবাণী মুর্শিদাবাদ অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে 102.2 মেগাহার্টজ FM প্রচার তরঙ্গে এবং নিউজ অন AIR অ্যাপে। একটু পরে দিল্লি কেন্দ্রের হিন্দি সংবাদ রিলে করে শোনানো হচ্ছে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে জয়া ভারতী। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक मतों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता में मतदान में धांधली होने के बाद इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। यहाँ इस महीने की 21 तारीख को मतदान कराया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 33 वर्षीय त्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के साथ 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज़ ऑन AIR ऐप और न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिक

0: गया। इसका काम भारतीय सेना तक जरूरी सामान पहुंचाने का होता है।
1: ये मेरे शिल्पी निशित साधु।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
2: We want peace and stability.
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
2: Importer of energy and much of it comes from that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 109,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 149,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपने श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुरुयामक और विकास प्राधिकरण PFRDA और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पॉडकास्ट।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, दी आकाशवाणी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर हम बात करें 9 अंक की, तो बहुत खास होता है। ये पूर्णता, परोपकार, आध्यात्म और ज्ञान का प्रतीक होता है, और ये बताता है कि ये जीवन का ना कई चक्र पूरे हो चुके हैं। तो हम क्यों बात कर रहे हैं इसकी, क्योंकि आज हमारे इस एपिसोड का ना 9 अंक से बहुत खास लेना देना है, क्योंकि जो प्रसार भारती है, उसका जो रेडियो डिविजन है, वो अपने 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है। और इस खास मौके पर हमने सोचा कि क्यों ना आपको हमें एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएं जिसने 90 सालों के सफर को या उसके बहुत अहम पहलुओं को करीब से जाना है, समझा है। आज हमारे साथ हैं फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी मिताली चटर्जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: धन्यवाद।
3: आपने स्वागतो क्या बोलते हैं आप बताएं?
4: सुस्वागतम, अदरवाइज आप हिंदी में बोल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आई एम अ यूपीआइट।
3: ओह, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी, धन्यवाद।
3: आपके करियर से शुरुआत करते हैं।
4: जी,
3: रेडियो हम सब सुनते हैं, बहुत बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं। तो जब आप रेडियो सुनती थीं, क्या कभी आपने सोचा था कि आप रेडियो में जाकर काम कर रही होंगी?
4: हाँ, ये बात आपने बहुत पूछी है जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। इनफैक्ट वो दौर ही कुछ और था, 80s का दौर था, और उस समय रेडियो का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था हर एक के जीवन में, क्योंकि उस समय ये प्राइवेट कुछ भी नहीं था और टीवी भी नहीं था। तो रेडियो मतलब बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए इट वाज अ वेरी बिग एंटरटेनमेंट, और एक फैसिनेशन भी होता था, क्योंकि वहाँ पे द पीपल हु वेयर प्रेजेंटिंग द प्रोग्राम्स वो लार्जर देन लाइफ होते थे हम लोग के लिए, कि हम लोग एक इमेजिन करते थे। रेडियो में वही पक्ष सबसे मजेदार है, आप कुछ भी सोच सकते हैं जी, कैसे हो रहा होगा पीछे।
3: तो वो इमेजिनरी वर्ल्ड यहाँ पर आकर क्या बिल्कुल वैसा ही था जैसा आपने सोचा था?
4: देखिए, एक शुरुआती में जर्नी बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मेरी जर्नी शुरू हुई थी व्हेन आई वाज इन माय टीन्स।
3: ओके।
4: और मैंने बतौर एक क्लासिकल सिंगर युववाणी में एग्जाम दिया था, एंड आई गॉट थ्रू इट, तो वो मैंने प्रोग्राम करना शुरू किया। और मुझे पता नहीं था कि एक दिन मुझे यहीं पे काम करने को मिलेगा एज एन इंजीनियर।
3: उतने लंबे समय में आपने बहुत लंबे समय तक काम किया, आई एम श्योर आपने शायद बताया कि 33 सालों तक आपने काम किया, 3 दशक से भी ज्यादा। क्या उस समय से लेकर अब तक एक ट्रेडिशनल वे में जब हम काम करते थे और आज इंटरनेट के दौर में और डिजिटल एरा में क्या फर्क आया है, क्या एवोल्यूशन आपने देखा है?
4: एक तरह से मैं अपने को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि मैंने वो पुराने दौर से लेके डिजिटल एरा तक का सफ़र पूरा अपनी आंखों से देखा है।
3: बिल्कुल।
4: अपनी सर्विस के दौरान, और मैंने हर एक पल को जिया भी है बहुत नज़दीकी से।
3: डेफिनेटली।
4: एंड सबसे बड़ी बात है, आज के समय में कई बार हम सुनते हैं, लोग बोलते हैं ना, AIR, ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन कहाँ चला गया, क्या है, लेकिन उस समय इसका एक ओहदा ही कुछ और हुआ करता था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि फर्स्ट जब इंटरनेट आया था 1997 के आसपास, AIR वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रेडियो और इंटरनेट की शुरुआत की थी, और वहाँ पे हम लोग के पास इतने प्रोग्राम मतलब इतने ईमेल्स आया करते थे, और हम लोगों ने R&D रिसर्च डिपार्टमेंट से इसकी शुरुआत हुई थी, तो हम लोग के पास सैकड़ों की तादाद में आया करते थे, क्योंकि फॉरेन में उस समय इस तरह के भारतीय प्रोग्राम्स का कोई माध्यम नहीं था, क्योंकि उस समय DTH शुरू नहीं हुआ था।
3: बिल्कुल।
4: तो वो एक दौर था कि उस समय डिजिटल 1998 में रेडियो ऑन इंटरनेट शुरू हुआ
3: जी,
4: तो वो एक बहुत ही यादगार समय है। और जिस समय मैंने ज्वाइन किया उस समय तो FM इट स्टार्टेड
3: जी,
4: तो वो भी एक हमने देखा था कि लोगों के बीच में कितना उत्साह है, और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता था काम करके।
3: बिल्कुल। डिजिटल एरा में

0: मालूम होते थे। आज के डेट में कोई भी ड्राइवर लेके गूगल मैप पहले ऑन करता है, उसके बाद गाड़ी चलाता है। तो हम लोग शायद अपनी जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है उसको शायद लूज करते जा रहे हैं, जो मुझे लगता है कि शायद जो हमको और प्रोग्रेस करना चाहिए था वो कहीं हम लोग इतनी डिपेंडेंसी नहीं हो।
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। अब मैं बात करूंगी यहाँ पर, क्योंकि अब डिजिटल एरा में रेडियो और टेलीविजन लगभग मिक्स हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। अब रेडियो सिर्फ सुनने का माध्यम नहीं रहा, अब हम कहीं कहीं उसे देख भी सकते हैं। रेडियो और टेलीविजन दोनों का डिफरेंस आपको क्या समझ में आता है, क्या खास डिफरेंस है और किस तरह से रेडियो यूनिक है?
0: देखिए, अगर बीइंग एन इंजीनियर टेक्नोलॉजी की अगर बात करें
1: जी,
0: तो
1: जी, उस पे भी आएंगे हम आगे।
0: हाँ, वो तो फर्क, बहुत फर्क है। लेकिन मेरा ये पर्सनल व्यू है कि जब आप टीवी में देखते हैं, वैसे तो कहा जाता है कि ऑडियो विजुअल माध्यम ज्यादा सशक्त है, लेकिन जब आप टीवी में देखते हैं तो आपको सामने ही सब कुछ दिखता है कि जो आदमी एक्ट कर रहा है या जो भी कर रहा है। लेकिन रेडियो में एक वो तिलिस्म या आप कह सकते हैं कि एक जादुई दुनिया, और आप जिनकी आवाज सुन रहे हैं यू आर फ्री टू इमेजिन द पर्सन बिहाइंड दैट। आई फील दैट वे AIR हैज द एडवांटेज, क्योंकि जब हम लोग हवा महल सुनते हैं या कुछ भी सुनते हैं, शायद वही जो आर्टिस्ट है पीछे वही कर रहे होते हैं। लेकिन हम जब भी उनकी बातों को सुनते हैं या उसके हिसाब से हम उसको इमेजिन करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है।
1: राइट राइट जी। अगले 10-20 सालों में आपको क्या लगता है रेडियो कहाँ पहुँचेगा, या क्या AI का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा जैसा कि डर बना हुआ है, जिस तरह से टेलीविजन के क्षेत्र में भी जो है AI आ चुका है, और रेडियो में क्या किस तरह की चीज़ें हो रही हैं?
0: देखिए, AI जो है आज के दिन में सब जगह पेनिट्रेट कर चुका है, और मुझे लगता है कि जब तकनीक अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल करना भी वाजिब है। लेकिन वही है कि AI को इस्तेमाल करते करते हम अपनी RI को ना भूल जाएं, रियल इंटेलिजेंस विच इज़ अ ह्यूमन एसेट। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि AIR के पास आज के समय में जो सबसे बड़ी इसकी ताकत है, आप लोग के प्रोग्रामिंग स्टाफ का, क्योंकि इनको इतने अच्छे से सेलेक्ट किया जाता है, दे आर कमिंग फ्रॉम UPSC, तो इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए कि कम से कम उन लोग ग्रास रूट लेवल तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें। क्योंकि आज का ज़माना देखिए, इट इज़ नॉट वॉर्स आर द रियलिटी टूडे। वी नेवर थॉट कि 21st सेंचुरी में वॉर्स होंगे जी। लेकिन और एक चीज और है कि इसमें संचार माध्यम या जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको लास्ट पॉइंट तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, जैसा आप कह रही हैं कि कुछ लोगों को पता भी नहीं होता
1: जी,
0: है।
1: मैं वही बात कर रही हूँ कि ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज में बहुत लोग हैं जो इस टेक्नोलॉजी को जानते भी नहीं है और उनको अक्सर ठगा जाता है।
0: बिल्कुल,
1: ये होता है, तो ये नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल, ये बहुत डेंजरस है।
1: अभी तो हमने बात करी कैसे एवोल्यूशन हुआ, अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। क्योंकि जब रेडियो की बात होती है तो अक्सर लोग सिर्फ RJ को जानते हैं या अनाउंसर को जानते हैं, पर उसके पीछे बहुत बड़ी टीम काम करती है। जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारी पूरी एक टीम है यहाँ पर काम करती है, उसके बिना ये पॉडकास्ट लाइव नहीं हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: तो उसी तरह से रेडियो में भी है। किस तरह से पूरी जर्नी होती है, क्या प्रोसेस होता है, वो जो पकी पकाई खीर है लोगों तक पहुंचती है, उसको टेबल तक पहुंचाने का काम करने वाले लोगों का नाम भी आना चाहिए सामने, क्या रहता है वो पूरा प्रोसीजर?
0: देखिए, वाकई में तो ये सारा का सारा फिजिक्स एंड साइंस की करामात है, जो हम लोग इतने दूर बैठे भी सबकी बातें या देख सकते हैं, तो उसमें पीछे बहुत सारी चीज़ें काम कर रही होती है तकनीकी। पहली बात तो हम आप जहाँ पे, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, शायद इस कमरे से दूसरे कमरे में जाके ही आपको सुनाई नहीं पड़ेगा कौन क्या बोल रहा है। तो ये एक यहाँ पे डिजिटल में तो इनकोडिंग की प्रोसेस भी होती है उसके बैंडविड्थ को कम करने के लिए, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसड्यूसर से हमारी वॉइस को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट करते हैं।
1: तो क्या क्वालिटी में चेंजेस आते हैं या वैसे ही रहती है?
0: नहीं, इट डिपेंड्स। से डिजिटल में तो आज के डेट में क्वालिटी, इनफैक्ट आप जो सुनते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में, यू कैन इम्प्रूव इट रादर, कि आपने कहीं पे गलत बोल दिया या आपकी आवाज में खराश है तो वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन इम्प्रूवमेंट का जहाँ तक है, आज के डेट में AIR प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट यूज करता है सारे, तो उसमें उस तरह की डिग्रेडेशन का कोई चांस नहीं है। और बाकी जो है हमारे तकनीकी जो सहायक हैं वो लोग भी काफी अच्छे से अपना काम करते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि उसमें कोई डिटरेशन है।
1: राइट।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85

0: से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: अब बात करते हैं कि हम देखते हैं और सुनते हैं कि बहुत सारे रेडियो चैनल्स काम करते हैं अपने अपने अलग अलग तरीके से, लेकिन आकाशवाणी का जो है वो एक अलग अंदाज रहा है जिसे लोग याद करते हैं, और बहुत ही सभ्य भाषा के लिए जाना जाता है आकाशवाणी, जो मुझे लगता है कि अभी भी कायम है। ऐसा नहीं है कि हम भाषा अच्छे इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सो अभी इस फास्ट पेस्ड एनवायरमेंट में किस तरह से बाकी रेडियो चैनल्स जब बहुत फास्ट पेस्ड हो गए हैं तो कैसे पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस हमारी जो है वो अपने आप को सहज बना पाती है या उस तरह से प्रस्तुत कर पाती है लोगों के सामने?
2: देखिए, बहुत ही एक कठिन सवाल आपने पूछा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिसमें हमारे कोड ऑफ कंडक्ट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और ठीक है, एक समाज के हिसाब से जो बने थे उस समय जैसे भी बने हैं, तो उसके दायरे में रखकर सारी चीज़ों को करना मुश्किल होता है प्रोग्राम, क्योंकि आज के दुनिया में जो चीज़ें पहले शायद वो कहते हैं ना नियो नॉर्मल, तो पहले जो चीज़ें शायद स्वाभाविक नहीं थी, आज के डेट में वही चीज़ें आज के डेट में स्वाभाविक हैं। तो आप अगर उसको कुछ चीज़ें कर्टेल करते हो तो स्वाभाविक है आप यंगर जनरेशन के बीच में आप थोड़े से ऑकवर्ड लगोगे। तो वो तो एक कहीं पे है, और इसमें इस तरह का भी आप कह सकते हैं कि जैसे किसी को आपने सैक रेस वाला ड्रेस पहना दिया और उसको बोला गया जाए कि मैराथन दौड़ो।
1: जी जी बिल्कुल।
2: तो कठिन है, यस, लेकिन साथ में आकाशवाणी का ये एक बहुत अच्छी भी बात है कि इसकी एक अलग पहचान है। इसको आप सारे परिवार के साथ आप सुन के बैठ के देख सकते हो, प्लस उसके अलावा जो प्रोग्राम होते हैं उसमें कुछ ना कुछ अर्थ होता है, और बहुत सारी प्रोग्राम मुझे लगता है जेनजी भी सुनती। मैं अभी देख रही थी, इंटरनेट पे मैं चेक कर रही थी, करीब 50% लोग जब गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, दिल्ली में तो आप जानती हैं गाड़ी में ट्रैवल करना कितना लंबा और डिफिकल्ट होता है, तो लोग रेडियो सुनते हैं कि दैट्स द ओनली वे दैट दे गेट एंटरटेनमेंट। तो मुझे लगता है वहाँ पे एआईआर का ऐसा भी नहीं, लोग सुनते हैं, मैं तो सुनती हूँ, मैंने देखा है बहुत सारे लोग सुनते हैं स्पेशली अच्छे वाले प्रोग्राम,
1: और नए नए लोग कनेक्ट हो रहे हैं।
2: बिल्कुल।
1: इतना लंबा समय जो आपने बताया यहाँ पर आकाशवाणी में, आपके खुद के एक्सपीरियंस क्या रहे वर्क कल्चर में या पर्सनल, या फिर क्या आपके टेक अवेज यहाँ से रहे?
2: देखिए, उस हिसाब से मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि वर्क कल्चर के हिसाब से यहाँ पे बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, और इसमें चाहे आपके सीनियर्स हो चाहे आपके कलीग्स हो, दे आर गुड, दे आर वेरी गुड पीपल एंड दे गिव यू द स्पेस। और शुरू शुरू में मुझे याद है जब ने ज्वाइन किया था उस समय मेरे हम लोग थ्रू इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस आए थे डायरेक्टली क्लास 10 सर्विस में, तो वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो नेचुरली एक फ्रेश रिक्रूट को कुछ भी पता नहीं होता है कैसे, व्हाट आर द नॉर्म्स एंड कैसे उसको बिहेव करना है। तो माय बॉस कॉल्ड मी वन डे, वी वर गिवन अ रूम, सेपरेट रूम्स एंड ऑल दिस, और उस समय काफ़ी लोग रिस्पेक्ट करते थे बहुत ज़्यादा। तो सर आए मेरे कमरे में, ही सेड कि लिसन, यू आर जस्ट गॉट एंट्री टू द सर्विस, आपको कमरे में बैठने के लिए नहीं बोला है, गो टू द फील्ड्स।
1: ओह माय गॉड।
2: सो हम लोग जाते थे, और फील्ड्स में उस समय जैसे एंटीना ट्यूनिंग यूनिट वगैरह ये सारे बहुत खेत टाइप की जगह में हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े घास हुआ करते थे, कई बार सांप वगैरह भी निकलते थे, तो यू वर सपोज टू गो देयर एंड लेकिन अच्छा लगता था, मैंने हमने एंजॉय किया है धूप में, कड़ी धूप में, और वो एक सेटिस्फेक्शन होता था कि आप कुछ कर रहे हैं वर्थ वाइल। तो आई एम इंडेटेड टू दोज पीपल हु हैव टॉट मी, मे बी इट वॉज अ डिफिकल्ट वे इनिशियली, लेकिन उन्हीं की वजह से शायद।
1: जी, आपने भी बीच में बात करी थी रिस्पेक्ट की, तो मैं इस बात पे आना चाहूंगी कि पहले जनरली लोग जब कोई प्रोफेशन की बात आती थी या करियर की बात आती थी तो डॉक्टर इंजीनियर इसी तरह से हम प्रोफेशन को लेते थे, तो उस समय आपके लिए कितनी मुश्किल हुई थी ये बताने के लिए घर में कि मुझे रेडियो ज्वाइन करना है, क्या उतना ही रिस्पेक्टफुल करियर ऑप्शन था या आसान था या मुश्किल था?
2: देखिए, उस समय की तो बात ही अलग थी, मे बी इट वॉज वेरी लॉन्ग लॉन्ग बैक। उस समय इंजीनियरिंग में भी लोग बहुत ज़्यादा नहीं आते थे, हमारे क्लास में ओनली 4 गर्ल्स वेर देयर एंड रेस्ट ऑफ ऑल द पीपल वेर बॉयज, एंड घर से भी थोड़ा सा वो रहता था कि अच्छा इतने साल 4 साल का इंजीनियरिंग करेगी फिर ये है, उस समय मतलब लोगों को बस ये रहता था कि लड़की बड़ी हो गई तो शादी कर दो। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फादर हु स्टूड बाई मी एंड आई एम द ओनली चाइल्ड. तो उन्होंने मेरे को पूरे समय सपोर्ट किया पढ़ाई में और मेरे को इंजीनियरिंग करने को दिया. लेकिन दादी ने फिर उन्होंने बोला कि नहीं, बस हो चुका पढ़ाई वढ़ाई. तो एग्जाम तो दे दिया था मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का, रिजल्ट नहीं निकले थे मेरे, तो मुझे उन्होंने शादी हो गई मेरी. शादी के बाद फिर रिजल्ट्स आए और मुझे आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई गॉट द AIR इलाहाबाद, नहीं तो शायद नौकरी भी नहीं होती. एंड इसमें लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं आई विल उस समय की मैं बोलती हूँ कि ज्वाइंट फैमिलीज होती थी. माई फादर इन लॉ जस्ट सेड वन वर्ड, वन सेंटेंस, ही केम टू ड्रॉप मी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई ज्वाइनिंग टू AIR इलाहाबाद एंड ही टोल्ड मी, यू वर्क सिंसियरली एंड डेडिकेटेड वे सो दैट यू बिकम indispensable for people. और वो बात मैंने गांठ बांध ली.
1: That is quite a support.
2: बिल्कुल. और इसमें आई थिंक फैमिली सपोर्ट, मेरे पेरेंट्स का, मेरे इन-लॉज का अगर नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती.
1: आपकी लर्निंग्स की बात कर ली हमने, अब हम बात करते हैं क्या कोई ऐसा फनी मोमेंट है जो आपको अभी तक याद हो, जो आप भूले ही ना हो अपनी ज्वाइनिंग के बाद, कोई ऐसा दिन रहा हो. मुझे लगता है शायद ज्यादा ही रहे होंगे, बट कोई एक ऐसा बताइए हमें इंसिडेंट.
2: देखिए बहुत सारे इंसिडेंट आज के ज़माने में फ़नी लगती हैं, लेकिन उस समय तो जान से आई रहती है. एंड आई स्पेशली रिमेम्बर वन इंसिडेंट. हमारे उस समय आकाशवाणी के प्रोग्राम का लोग काफ़ी आया करते थे, दर्शक भी बहुत होते थे. एंड हम लोग को समझिए, आज के ज़माने में शायद आप लोग इसको सोच भी नहीं पाएंगे, 2 मिनट का भी ब्रेकडाउन होता था. दैट वॉज टेकन एज अ मेजर ब्रेकडाउन एंड द पर्सन जिसके अंतर्गत हुआ है उसको वो करना पड़ता था कि एक्सप्लेन करना पड़ता था कि क्यों मेजर ब्रेकडाउन है, बेबी इट विल गो टू योर CR ऑल्सो.
1: बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे.
2: तो एक बार हमारे, और आकाशवाणी फेमस है अपने बिल्कुल टाइम से प्रोग्राम स्टार्ट करते, पर एक बार हमारे यहाँ पे इलाहाबाद में आए थे, एक गायक आए थे रात के टाइम में, करीब 8 बजे हम लोग की प्रोग्राम शुरू होने वाला था संगीत का, बाहर एक ऑडिटोरियम में सारे लोग बैठे हुए थे. अचानक उन्होंने रात 8 बजे डिमांड कर दी, मुझे गरम दूध चाहिए और पान चाहिए, उसके बगैर मैं जाऊंगा नहीं स्टेज पे. हम लोग उस समय मतलब दौड़ रहे हैं कि कहाँ से गरम दूध मिलेगा, बिल्कुल, बिकॉज ऑडियंस वॉज देयर एंड वी हैड टू स्टार्ट द प्रोग्राम. So, उस समय जान सांसत में आई होती है.
1: ड्यूरिंग द प्रोग्राम?
2: यस, इट वाज ड्यूरिंग, यस.
1: 90 इयर्स हमारे आकाशवाणी के कंप्लीट हो रहे हैं, होने वाले हैं जल्दी ही. तो इन 90 इयर्स का जो पूरा टोटल मैसेज है वो आप क्या देना चाहेंगे जो हमारे न्यू कमर्स हैं उनके लिए, जो आरजेइंग के फील्ड में आना चाहते हैं, टेक्निकल फील्ड में आना चाहते हैं, या आकाशवाणी से किसी भी तरह से जुड़ना चाहते हैं ब्रॉडकास्टिंग में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
2: देखिए मैं तो यही बोलूँगी कि यू कैन कम एंड लिव योर ड्रीम्स, क्योंकि तकनीक एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको अपने भीतर की जो प्रतिभा है या जो भी आप करना चाहते हैं आप उसको बिल्कुल दिखा सकते हैं. और सबसे बड़ी बात है कि ब्रॉडकास्टिंग का एक स्कोप है कि इतने सारे लोगों को इफेक्ट करने की क्षमता रखता है
1: जी.
2: तो मास कम्युनिकेशन इसीलिए कहा जाता है, और आज की डेट में जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप तो जानते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि अगर किसी में वो पैशन है और कुछ करना चाहता है, अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट करना चाहता है या कुछ उस तरह की प्रतिभा है, तो बिल्कुल आना चाहिए इसमें.
0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प.
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको.
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं. अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें.
1: एक सवाल मेरा और है आपसे, आप जब आपने ज्वाइन किया या आपके टाइम पर मास कॉम इतना पॉपुलर नहीं था एज अ सब्जेक्ट, एज अ करियर?
2: अगर सच बताऊं, वास्तव में आप ठीक कह रहे हो सर, मास कम्युनिकेशन वाज नॉट अ वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट. लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखा देती है.
1: बिल्कुल.
2: एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट इन दैट वे बिकॉज आई कम फ्रॉम प्रयागराज इलाहाबाद एंड इट वॉज अ वेरी वेरी वाइब्रेंट आर्टिस्टिक सीन दे.
1: ट्रू.
2: क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे और
1: नेचर से जुड़े हुए हैं.
2: हाँ, नेचर से भी, और बहुत सारे फंक्शन हुआ करते थे आपके, ड्रामा कंपटीशन से लेके म्यूजिकल फेस्टिवल. तो और मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स एज वेल एज मेरे माई इन लॉज देवर इन टू दैट फील्ड, तो मुझे बहुत कुछ एक्सपोजर मिला उनकी वजह से, ये सब देखने का और सुनने का और जानने का. तो एक वो आप कह सकते हैं नेचुरल प्रोसेस में वो धीरे धीरे धीरे धीरे
1: रमता गया
2: आप जानते गए, प्लस हमारी नौकरी तो है ही, तो प्रोफेशन में भी जब लोग फील्ड स्टेशन में रहते हैं तो यू आर सपोज टू डू, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए डायरेक्टरेट या बड़ी जगह में आपको स्पेसिफिक काम होते हैं, लेकिन जब आप स्टेशन पे जाते हैं आपको मतलब कहते हैं ना कि ईंटे से लेके और पूरा स्टूडियो तक सब देखना पड़ता है,
1: मल्टीटास्क। मैं वही आपसे अब क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि पहले क्या, अब तो स्पेसिफिकली हमको एक टास्क असाइन कर दिया जाता है ना कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस समय तो यही चलता था और मुझे लगता है सब कुछ आना बहुत अच्छा होता था कई बार, तो वो सारी चीजें मल्टीटास्किंग आपको यहाँ आकर सीखने को मिली या आप में पहले से ही इतनी काबिलियत थी कि आप मल्टीटास्किंग करने के लिए तैयार थी?
2: नहीं नहीं, पहले से तो नहीं पता होता है किसी को भी, फ्रॉम जस्ट रॉ फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज, तो आई एम वेरी थैंकफुल दैट प्रोफेशन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मतलब क्योंकि मुझे आते ही इंस्टॉलेशन ऑफिसर बना दिया, हमारे झूसी में एक हाई पावर ट्रांसमीटर इंस्टॉल हो रहा था और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि किस तरह से चीज़ें होती हैं या किस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है, तो माई बॉस टॉट मी और बहुत डांट के सिखाते थे कि ईंटों को समझना सीखो, ये ऑरेंज वाली ईंटें होती है और कच्ची ईंटें होती है वो नहीं लगनी चाहिए।
1: आजकल स्कूल्स में भी डांट बंद हो गई है, ऑल्दो डांटना इज वेरी गुड, थोड़ा हम
2: बहुत
1: डर कर सीख लेते थे वो अच्छी बात थी, थोड़ा डर होना जरूरी है। बिल्कुल, अब हम आते हैं, हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं, मैं एक चीज और पूछ लूं फिर हम आखिरी आपसे बात करते हैं कि इन सारे प्रोसीजर के दौरान क्या कभी आपको ऑन एयर जाने का भी मौका मिला, कभी ऐसा हुआ? क्योंकि मुझे लगता है मल्टीटास्किंग में वो भी शामिल है।
2: जी हाँ, मुझे कई बार मिला है, बिकॉज आई वॉज अ स्टेशन इंजीनियर इन दूरदर्शन शिमला, तो वहाँ पे जैसे बड़े शहरों से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि गुवाहाटी या इवन शिमला में भी दूरदर्शन का आकाशवाणी का तो बहुत लोग सुनते थे और बहुत उसमें चार्म था लोगों का, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते थे कि कहाँ पे क्या नहीं आ रहा है, कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो टेक्निकल एंड प्रोग्राम रिलेटेड चीज़ों में हमारे स्टेशन डायरेक्टर और मुझे कई बार वो व्यूअर्स के क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हम लोग को बैठना पड़ता
1: था। मुझे थोड़ा सा एक एग्जांपल देके यहाँ पर बताइए प्लीज।
2: ऐसे तो रैंडम कुछ याद नहीं, लेकिन हाँ उस समय थोड़ा सा क्योंकि आप बैठे हैं जनता के सामने और जनता पूछ रही है, तो यू हैव टू बी वेरी हम्बल और अलर्ट ऑल्सो। जैसे हमारे यहाँ पे वो जनरेटर चलता था एंड यू नो जनरेटर टू ट्रांसमीटर तक ऑन करने में थोड़ा सा गैप चला जाता है, इट टेक्स टाइम बिकॉज एक के बाद एक चीजें ऑन होती हैं और उसी तरह से, तो आम लोगों को नेचुरली ये समझ में नहीं आता है, तो उनको गुस्सा आता था कि हम ये प्रोग्राम देख रहे थे और बीच में से ये कट गया और इतना सारा मेरा मिस हो गया और ये हो गया वो हो गया, तो उनका गुस्सा भी वाजिब है
1: जी।
2: हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे ये भी फैक्ट है कि टेक्निकली अगर मान लीजिए लाइट गई है, जनरेटर आपका तुरंत ही ऑन हुआ है, लेकिन सारे सिस्टम को ऑन होने में देयर वुड बी अ डिले, तो उसको आपको थोड़ा सा समझाना पड़ता था, बोलना पड़ता था अच्छे से कि हम लोगों ने अपनी तरह से कोशिश की, ये इनेविटेबल है।
1: हमारे पास अभी समय की कमी है तो हमको अब जल्दी से इसको रैप अप करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी क्योंकि हमने सिक्के के एक पहलू की बात करी है, हमने आपकी ड्यूटीज की बात कर ली है, अब दूसरा पहलू आता है। हमने सुना है आप बहुत मधुर आवाज की मलिका हैं और क्लासिकल सिंगिंग में ट्रेंड है, तो दो लाइन जो भी आपको पसंद हो जाए।
2: मुझे ऐसे ही रैंडमली कुछ याद आ रहा है, एक बहुत पहले मैंने आई थिंक व्हेन आई वाज इन स्कूल मैंने ये सीखा था, एक भजन है

0: क्या बात है, आपकी इस गायकी ने आज के हमारे पॉडकास्ट में ना दिन में ही चार चांद लगा दिया। ऑल्दो हमारी लाइट्स काम कर रही हैं, लेकिन इसने जो रोशनी बिखेरी है उसके क्या ही कहने
1: हैं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया।
0: थैंक यू सो मच।
1: चलिए, थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू सो मच टू यू टू, बिकॉज आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स तक, हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाई है, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।
1: और आकाशवाणी अपने 90 साल संपूर्ण करने जा रहा है, उस बारे में आकाशवाणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे लिए तो आकाशवाणी हमेशा से ही दिल के करीब रहा है और आशा करती हूँ कि ये उत्तरोत्तर और प्रगति करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। बहुत धन्यवाद।
0: आज के लिए हम इजाजत देते हैं आपसे।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू सो मच।
0: और साथ के साथ हमारी पूरी टीम जो यहाँ पर काम करती है उसको भी शुक्रिया कहना चाहते हैं हम, क्योंकि उनके बिना ये पॉडकास्ट अधूरा है। शालिनी चाहती है आपसे इजाजत। नमस्कार।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन। आकाशवाणी मुर्शिदाबाद, एखन विविध भारतीर अनुष्ठान।

16 साल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।
2: आज के फनकार।

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला।

सन 1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार ए आर कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे के एल

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरू सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजनू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

तुझे। दोस्तों, मजरू सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरू के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया है।

24 मई सन 2000 को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजनू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।
1: इश्क

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डीजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए।
2: এতক্ষণ শুনছিলেন বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠান আকাশবাণী মুম্বাই কেন্দ্র থেকে। আকাশবাণী মুর্শিদাবাদ অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে 102.2 মেগাহার্জ FM প্রচার তরঙ্গে এবং নিউজ অন AIR অ্যাপে। পরবর্তী অনুষ্ঠানে যাব, তবে তার আগে ছোট্ট বিজ্ঞাপন।
3: গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা, ন্যারো ব্যান্ড ইমেজিং এন্ডোস্কোপি। এন্ডোস্কোপির এক উন্নততর সংস্করণ যা ডিসপ্লাসিয়া, টিউমার মার্জিন ও এক্সটেনশন ইত্যাদি রোগ নির্ণয় করে। জিবি হসপিটাল এন্ড ডায়াবেটিস ইনস্টিটিউট দিয়ে থাকে পরিপাকজনিত চিকিৎসার সম্পূর্ণ পরিষেবা। 139 রেল লেনিন সরণী, কলকাতা 13।
2: আকাশবাণী মুর্শিদাবাদ। এখন শুনবেন অনুষ্ঠান যুব জগৎ।